सौसेरा दौरान भी आ गया सा सौ कुछ हम गया बह खिलू बह मा खा स्वाद कुछ गा सा ससेरा